अयोध्या में हर्ष और उल्लास के साथ श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गईं, परंतु विधि का विधान कुछ और था। राजा दशरथ ने माता कैकेयी को 3 मांगे पूरी करने का वचन दिया था। विधि की प्रेरणा से माता कैकेयी ने राम के 14 वर्ष वनवास की मांग की। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचनु न जाई। और पिता के वचन को निभाने के लिए राम जी चले वनवास।

अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

श्री रामलला भगवान की, श्री आनंदकंद भगवान की, श्री कौशल्यानंदन भगवान की, श्री दशरथ नंदन भगवान की, श्री कैकेयी नंदन भगवान की, श्री सुमित्रानंदन भगवान की, श्री चारों भैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम जन्म भूमि की, श्री कृष्ण जन्म भूमि की, श्री काशी विश्वनाथ की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू महारानी की, जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, सर्वसंत वैष्णव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गो माता की, भारत माता की।

विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं तु योगिनां तु दुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपद्मं।

Berja

श्री मद्भगवद गीता वह दिव्य एवं पावन संदेश है जो स्वयं परमपिता परमेश्वर ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानव प्रजाति को दिया है। परम प्रभु स्वयं कहते हैं कि गीता उत्तम सार है, मेरा श्रेष्ठ निधान है। गीता ही अति उग्र मेरा और अविनाशी ज्ञान है। गीता मेरा परम रहस्य है, मेरा गुरु।

महान है। परम पद ये पार्थ मेरा, मेरा हृदय है, प्राण है। इस पवित्र शास्त्र के रचनाकार गुरुवर व्यास देव के शब्दों में गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ने शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा द्विनिश्रता, अर्थात कर्तव्य हो गीता सुवाचन अनर्थ शास्त्र विस्तार है, पद्मनाभ के मुख कमल से उदित ये उद्गार है। आइए इस दिव्य संदेश के उद्घोषक भगवान श्री कृष्ण की अनुपम छवि को अपने मन मंदिर में सजोएं।

गीता न तो महज दार्शनिक एवं विद्व चर्चा का विषय है और न ही मात्र जीवन निवृत्ति अथवा मोक्ष का उत्तम साधन, अपितु यह एक सुखमय जीवन जीने की अद्भुत कला है। इट हैज बीन राइटली सेड दैट गीता इज नॉट अ रिटायरमेंट प्लान बट इट इज द एसेंशियल डायनामिक्स ऑफ द लाइफ। द डीप रूटेड फिलोसफी इन ईच वर्ड ऑफ दिस ग्रेट स्क्रिप्चर गिव्स अस अ ग्लिम्स ऑफ रेयर डिवाइन नॉलेज एंड विजडम रिक्वायर्ड फॉर हैप्पी prosperous and contented life. In spite of repeated readings and analysis, Gita always remains eternally fresh and educative. आधुनिक युग के महर्षियों ने, आचार्यों ने, कर्मयोगियों ने, क्रांतिकारियों ने, समाजशास्त्रियों ने, चिकित्सकों ने व वैज्ञानिकों ने इसे अपनाया है। संत ज्ञानेश्वर, आदि शंकराचार्य, महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा, लोकमान्य तिलक, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्वामी प्रभुपाद एवं स्वामी रामसुखदास जैसे महान व्यक्तियों ने इस संदेश को न केवल अपनी जीवन शैली बनाया अपितु उत्कृष्ट शब्दों में अपने उद्गार भी जग जाहिर किए। महात्मा गांधी कहते हैं कि जब मैं निराशाओं से घिरा होता हूँ तो मैं गीता को उलटता पलटता हूँ।

अर्थात मेरा शरीर माँ के दूध पर जितना पला है उससे अधिक मेरी बुद्धि का पोषण गीता के दूध पर हुआ है। महामना पंडित मालवीय के विचार हैं कि इस अद्भुत ग्रंथ के 18 छोटे अध्यायों में इतने सारे उच्च गंभीर तथा सात्विक विचार भरे हैं कि वे एक साधारण मनुष्य को भी निम्न से निम्न दशा से उठाकर देवता के स्थान पर बिठाने की शक्ति रखते हैं। आइए इस पवित्र पावन संदेश का सरल भाषा में सरस संगीत के माध्यम से पूर्ण श्रद्धा के साथ श्रवण करें। यह सकल शास्त्रों की स्वामिनी है, समस्त श्रुतियों की रानी है, वह स्वयं श्री हरि मुख से निकली मधुर वाणी है।

प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का यथारूप सरल एवं संगीतमय हिंदी काव्यांतरण श्री गोविंद गीता अध्याय एक अर्जुन विषाद योग। हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन है। उनके अनुचर संजय को गुरुवर व्यास की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त है। धृतराष्ट्र संजय से दूर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में युद्ध के लिए उत्सुक विशाल कौरव व पांडव सैन्य दलों का हाल पूछते हैं। संजय महान वीर व पराक्रमी योद्धाओं से युक्त दोनों सेनाओं की सैन्य व्यवस्था के बारे में बतलाते हैं।

कि कुरु सेना के प्रधान पितामह भीष्म अपने शंख से सिंहनाद से गर्जना करते हैं। प्रत्युत्तर में पांडव सेना के सभी योद्धा अपने अपने शंख बजाते हैं। ऋषिकेश के पंचजन्य एवं धनंजय के देवदत्त शंख की अत्यंत दिव्य तथा गगनभेदी ध्वनि से वातावरण में कोलाहल हो उठता है।

हे राजन, अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण उसके रथ को बीच सेनाओं के खड़ा करते हैं। अर्जुन शत्रु पक्ष में अपने सभी स्वजनों, प्रियजनों एवं आचार्यों को देखकर ऋषिकेश से कहता है,

व्याकुल वैमोहग्रस्त अर्जुन श्री कृष्ण के समक्ष राज्य भोग के लिए स्वजन व गुरुवध को पाप योग्य एवं असंगत कार्य बतलाते हुए विभिन्न तर्कों के साथ युद्ध न करने का निर्णय लेता है। वह धनुष बाण एक ओर रखकर अपने रथासन पर बैठ जाता है।

की आ रही है ताम्रपर्णी और युग युग तक बहती रहेगी। ये ताम्रपर्णी के बारे में लिखा गया साहित्य भले ही मर जाए, ताम्रपर्णी बहती रहेगी, बहती रहेगी ताम्रपर्णी।

ताम्रपर्णी की यश गाथा गाते हुए कवि कुमरा गुरुपरर जैसे सरिता के रूप गुण पर विमोहित हो उठते हैं। तभी तो ताम्रपर्णी की जलधारा की विशेषताओं का गौरव गान करते हुए वे पौराणिक गाथाओं की ओर भी संकेत करते हैं। वास्तव में तमिल साहित्य संस्कृति में ताम्रपर्णी का महत्वपूर्ण स्थान है। महाकवि भारती, कुमरा गुरुपर स्वामीगल, मुट्टुपाटन और महाकवि कंबन जैसे तमिल के ख्यात कवियों ने ताम्रपर्णी की यशगाथा को अपने काव्य में व्यक्त किया है।

0: भारतीय संस्कृति में नदियों को बहुत महत्व मिला है, क्योंकि सभ्यता के विकास में इनका अन्यतम स्थान रहा है। इसीलिए अधिकांश नदियों की महिमा मंडित कथाएं पुराणों में मिल जाती हैं। गंगा यमुना, कृष्णा कावेरी, नर्मदा गोदावरी और ब्रह्मपुत्र सोन आदि नदियों की तरह भारतीय प्रायद्वीप की सुदूर दक्षिण की नदी ताम्रपर्णी के उद्भव की गाथा भी पुराणों में उपलब्ध है।
1: कथा है शिव विवाह का समारोह संपन्न।

0: कहते हैं कि शिव पार्वती के विवाह का अलौकिक दृश्य देखने के लिए देव गंधर्व ऋषि मुनियों के समुदाय में ऋषि अगस्त्य भी पधारे थे। उसी समय उन्हें शिवजी ने बुलाकर गंगा जल से भरा कमंडल दिया और साथ ही अविलंब दक्षिण की ओर जाने का आदेश दिया।
1: तो क्या अगस्त्य ऋषि शिव विवाह देखे बिना ही दक्षिण की ओर चले गए?
0: हाँ, उन्हें जन कल्याण हित यात्रा करनी थी, इसलिए महादेव शिव ने उन्हें ये वरदान दिया कि आप हमारे विवाह को कोदिदैत गिरी से ही देख सकेंगे। ऐसा वरदान पाकर अगस्त्य ऋषि कमंडल उठाकर दक्षिण की ओर चले गए।
1: फिर क्या हुआ?
0: दक्षिण क्षेत्र में पहुंचकर कमंडल रखकर थोड़ा विश्राम करने के लिए रुके। सहसा कहीं से उड़ता हुआ एक कौआ आया, उसके बैठते ही कमंडल लुढ़क गया और उसका आधा जल बाहर आ गिरा, जो धारा बनकर आगे प्रवाहित हो गया। कहते हैं कि उसी पवित्र प्रवाह से दक्षिण की गंगा कावेरी का उद्भव हुआ था।
2: लेकिन आप तो ताम्रपर्णी के उद्भव की कथा सुना रहे थे।
0: हाँ भाई, अब आगे की कथा सुनो, तभी पूरी बात समझ में आएगी ना। अपने कमंडल में बचा हुआ जल लेकर अगस्त्य मुनि कोदिदैगिरी पहुंचे। वरदान के अनुसार वहां पर वर वधु के रूप में उन्हें शिव पार्वती के दर्शन प्राप्त हुए। शिवजी के आदेश से अगस्त्य ऋषि ने कमंडल का शेष जल प्रवाहित कर दिया, जो कोरनय नदी के रूप में तेज जलधारा बनकर बहने लगा। यह कोरनय नदी ही ताम्रपर्णी के रूप में

0: था उसी पोदगय गिरि से हुआ है। पोदगय से 1837 मीटर ऊंची अगस्तियर गिरि के शिखर दिखाई पड़ते हैं। इस क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा होती है। वास्तव में तानपूर्ण यानी ताम्रपर्णी अगस्तियर पहाड़ से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। सितंबर नार जिला बनने से पहले ताम्रपर्णी एक ही जिले में बहकर सागर में मिल जाती थी।
1: वास्तव में पोदगय पहाड़ में पूर्णय नदी की जलधारा दो भागों में बट जाती है। एक का नाम अन्नपूर्णय यानी पुरुष पूर्णय और दूसरे का नाम तनपूर्णय यानी नारी पूर्णय है। अन्नपूर्णय केरल से होती हुई अरब सागर में मिल जाती है और तनपूर्णय बंगाल की खाड़ी तक पहुंचकर सागर जल में विलीन हो जाती है। मूलतः तमिल भाषा का तनपूर्णय शब्द ही कालक्रम में बदलकर ताम्रपर्णी

पठारी भाग में बहने वाली सरिता ताम्रपर्णी के नाम के बारे में एक और प्रसिद्धि है। इस नदी के उद्भव स्थल पर चंदन के वृक्षों के झुरमुट हैं। इनके पत्ते नदी जल में गिरते हैं, जिनका रंग ताम्रय यानी कमल के फूल की तरह हो जाता है। इसीलिए इस सरिता को ताम्रपर्णी कहते हैं। कुछ विद्वानों का विचार अलग है। उनके अनुसार ताम्रपर्णी नदी की रेत में तांबे के कण पाए जाते हैं, फलस्वरूप तांबा या ताम्रयुक्त होने के कारण इसका नाम ताम्रवर्णी या ताम्र।

0: क्षेत्र से निकलकर मैदानी भाग में आने पर इसकी धारा की तीव्रता समय समय कम होने लगती है। अब दोनों ओर से दो अल्हर सहेलियों की भांति दो सहायिकाएं पेयार और चित्तार ताम्रपर्णी की मुख्य धारा में आकर मिलती हैं।
1: वेगवती होती हुई ताम्रपर्णी नदी की धारा उछलती कूदती आगे बढ़ जाती है वानतीर्थम पहुंचने के लिए।
2: ये वानतीर्थम क्या है और कहाँ पर स्थित है?
1: पर्वत मालाओं से उतरकर ताम्रपर्णी की धारा पठारी भाग में बहती हुई विशाल जलप्रपात बनाती है, उसी को वानतीर्थम कहते हैं।
0: ताम्रपर्णी की जलधारा वानतीर्थम में लगभग 30 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरती है। चट्टानों पर गिरते ही इसकी जल राशि छिन्न भिन्न होकर फैल जाती है, हेमिल जल और उस पर फुहारों से बना कोहरा। लगता है जैसे निरभ्य आकाश से बादलों सहित झुक आया हो। यही स्थल है वानतीर्थम, अर्थात जिस तीर्थ पर आकाश उतर आया हो।

0: वहां एक विशाल जलप्रपात के पास ही तट पर देवी का मंदिर है, जहां भक्तगण पूजा आरती के लिए एकत्र होते हैं। यहां अमावस्या की संध्या को पूजा का विशेष महत्व है।
1: और सुना है कि ताम्रपर्णी नदी पर वानतीर्थम से आगे सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल नीलकंठन का संधि है, जिसका प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम कहा जाता है। हाँ, नीलकंठन कसम केवल पर्यटन स्थल ही नहीं, ताम्रपर्णी नदी के पास बने सरोवर के साथ ये एक ऐतिहासिक स्थान भी है।
0: ऐसी कथा है कि जहाँ पर ताम्रपर्णी से उसकी सहायता ताराय नदी मिलती है, वहाँ पर पांड्य राजाओं का बनाया हुआ एक छोटा सा दुर्ग था। जब दक्षिण में नवाबों के साथ युद्ध होता था,

0: कि राजा इसी किले में शरण लेते थे।
1: इस किले के बारे में रोचक जानकारी उस लक्ष्मण दे रहे हैं।
0: आगे की ओर विशाल दरवाजा था। ऐसी प्रथा थी कि जब कोई शत्रु आता हुआ दिखाई पड़ता था तो द्वार पर तैनात सिपाही ढोल बजाकर संकेत देता हुआ सावधान किया करता था। एक बार ऐसी घटना हुई कि शत्रु आ गया और शत्रु दल किले में प्रवेश कर गया और अभिमानी पांडे राजा को पराजय स्वीकार नहीं की, इसलिए उसने अपना सर काटकर नदी जल में फेंक दिया। उस स्थान को नीलकंठन कसम कहा जाता है। यहाँ पर राजा का सिर यानी मुंडन गिरा, उस स्थल को मुंडन तुरई नाम दिया गया।
2: नालालंबर मंगला के मेले और आर्च बोर्ड में कटिर पांच चंदा मार गए थे। आगे ले रहा तो अंदर कोटे की वासल अंदर आ रहा। अंदर ऐड दे लेने में ये भी वंदा कोटे आ जाना।
1: मुंडन तुरई इसी नाम से तमिलनाडु में एक मुख्य टाइगर रिजर्व यानी शेरों का अभयारण्य भी है। ये ताम्रपर्णी नदी की घाटी में फैला हुआ है। मुंडन तुरई अभयारण्य की जानकारी दे रहे हैं भारतीय वन सेवा के अधिकारी श्री भगवान सिंह।
3: द कलर कार्ड मुंडन तुरई टाइगर रिजर्व कंप्राइजेज ऑफ 817 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ फॉरेस्ट इन द सदर्न मोस्ट पोर्शन ऑफ वेस्टर्न घाट।
4: 1988 में भारत सरकार ने कलर कार्ड मुंडन तुरई को
5: शेरों का संग्रहालय बनाया। 817 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला घना जंगल पश्चिमी घाट के दक्षिण हिस्से का ही सिलसिला है। वहाँ सिर्फ शेर नहीं पाए जाते बल्कि बारह सिंघा, हिरण, चीता, नीलगाय और अनेक जानवर पाए जाते हैं। यहाँ सदाबहार किस्म के वृक्ष, जलाशय और पहाड़ी ढाल सुंदर नैसर्गिक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इसी वजह से ये सिर्फ अभयारण्य नहीं है, एक अच्छा पर्यटन स्थल भी बन गया है जिसे देखने के लिए बहुत से लोग आया करते हैं। अभयारण्य के वृक्षों की रक्षा के लिए सुरक्षा बल तैनात किया गया है। इसके प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने के लिए हर तरह की कोशिश की जाती है।
3: मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट, ड्राई पीक फॉरेस्ट, टू थॉर्न फॉरेस्ट।
1: भारत के ध्रुव दक्षिणी भाग में स्थित इस सदानीरा ताम्रपर्णी का क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि कार्य के लिए सिंचाई जल के अलावा ताम्रपर्णी से यथेष्ट मात्रा में जल विद्युत प्राप्त होने लगी है, जिससे उद्योग केंद्रों का विकास हुआ और तिरुनेलवेली जिले की कायापलट हो गई।
6: ताम्रपर्णी पर इस महत्वपूर्ण जल विद्युत योजना का नाम क्या है और उसका निर्माण कैसे हुआ?
1: पापनाशम ये नाम है ताम्रपर्णी नदी के मुख्य जलप्रपात का, जहाँ पर ताम्रपर्णी की जलधारा पठारी भाग में घुमावदार रास्ता बनाकर चट्टानों से घिर कर बहती है। ताम्रपर्णी की जलधारा से पन बिजली प्राप्त करने के लिए हमारे इंजीनियरों ने अथक परिश्रम किया। नदी की वेगवान धारा को रोककर एक विशाल जलाशय बनाने के लिए इस स्थान पर दोनों ओर की पहाड़ियों के बीच ऊंचा बांध निर्मित किया गया। जलाशय के बन जाने से यहाँ के किसानों को 12 महीने खेतों में सिंचाई के लिए पानी मिलने लगा, साथ ही ताम्रपर्णी में आने वाली बाढ़ का भय भी समाप्त हो गया। जल विद्युत उत्पादन करने वाली दक्षिण की पुरानी पनबिजली योजना पाप नशन की जानकारी दे रहे हैं जिलाधिकारी श्री आर वेल्लू।
7: தாமிரபரணி ஆற்றின் குறுக்கே 1944 ஒரு அணையை கட்டினார்கள். அந்த அணையின் நீர் மட்டம் 143 அடியாகும். முழு கொள்ளளவு
8: 1944 தாமிரபரணி நதிக்கு ஜல்தாரா பர் பாபநாசன் நிக்கட் விஷால் பாந்த் கா நிர்மாண் கியா கயா, ஜிஸ்கே ஜலாஷய மே 500 क्यूबिक फीट पानी रखने की क्षमता है। भरे होने पर इसकी गहराई 143 फीट की होती है। ताम्रपर्णी नदी पर

0: दूसरा बांध भी यहीं सिजबलारी पर बनाया गया, जिसके जलाशय की क्षमता 1225 क्यूबिक फीट और गहराई 143 फीट की है।
1: 11 கால்வாய்கள் இருக்கின்றன, 8 அணைகளும் ஆங்காங்கே கட்டப்பட்டு சுமார் 73,000 ஏக்கர் தார் சாகுபடியிலும் 86,000 ஏக்கர்
0: இந்த பாந்தோக்கு நிர்மாண கா முக்கிய உத்தேசம் கிசானுக்கு ठीक समय पर सिंचाई के लिए पानी देना, बाढ़ नियंत्रण और जल विद्युत का उत्पादन। और इस तरह महादेव शिव शंकर के वरदान के अनुसार ताम्रपर्णी पापनाशम तथा शेष बलारी के बांधों के द्वारा विकास कार्यों में योगदान देकर अपनी महिमा का लाभ बिखेर रही है। आगे बढ़ने पर ताम्रपर्णी नदी की एक सहायिका मणिमुक्तारू की जलधारा आती है, उस पर भी 1958 में एक छोटा बांध तैयार किया गया है। उससे 22,000 एकड़ की रबी फसल वाले खेतों के लिए सिंचाई जल मिलता है। ताम्रपर्णी की जलधारा से विद्युत उत्पादन के अलावा पेयजल और सिंचाई जल वितरण का प्रबंध किया गया है। अब सिंचाई विभाग ने सिंचाई जल प्रबंध के लिए तारीख भी निश्चित कर दी है। रबी की फसल के लिए जून की पहली तारीख और खरीफ के लिए अक्टूबर की पहली तारीख को पानी छोड़ा जाता है।
2: वैज्ञानिकों तथा जल शास्त्रियों ने इसके जल के उपयोग का प्रयत्न जारी रखा है। अनेक छोटी बड़ी बहुउद्देशीय योजनाएं आरंभ की गई। एक सुखद तथ्य है कि छोटी होती हुई भी ताम्रपर्णी दक्षिण भारत में पहली नदी है जिसके सर्वाधिक जल का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि इस इलाके में खुशहाली आई है और विकास का लाभ किसानों तथा ग्रामवासियों को प्राप्त हो रहा है। धान उपजाने वाले इस कृषि प्रधान क्षेत्र में चावल अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। नदी ताम्रपर्णी के सहारे पूर्ण हुए विकास कार्यों की जानकारी अंबा समुद्रम केंद्र के प्रधान श्री डब्ल्यू विल्फ्रेड मैनुअल दे रहे हैं।
3: ताम्रपर्णी पासन पगडियल इरुभोगंगलिल नेल सागुबडी செய்யப்படுகிறது। முதல் போகத்தில் மே ஜூன் முதல் செப்டம்பர் அக்டோபர் வரை
0: ताम्रपर्णी नदी का सिंचाई जल खेतों के लिए उपलब्ध होने लगा। इस सुविधा से पूरा लाभ उठाने के लिए यहाँ की मुख्य फसल धान की ओर ध्यान दिया गया। साल में ही धान की दो फसलें उगाई जाती हैं, पहली मई जून में तथा दूसरी सितंबर अक्टूबर में। क्षेत्र में चावल के उत्पादन को बढ़ाने और इसकी खेती समस्याओं के निराकरण के लिए ताम्रपर्णी नदी के किनारे अंबा समुद्रम नामक स्थान पर 1937 में चावल अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। जहाँ विभिन्न प्रकार की फसलों, कीटाणुनाशकों तथा खाद के बारे में तरह तरह के प्रयोग कर धान की अच्छी किस्म प्राप्त की जाती है, जिससे चावल का उत्पादन बढ़ता रहे। अब तक इस अनुसंधान केंद्र से 18 प्रकार की नई किस्में प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें 1986 में विकसित अंबई 16 उत्तम कोटि की है, जिसे बहुत कम समय में ही धान की अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है। इसी के द्वारा 1989-90 में सिदम्बरनार जिले के कृषि मेले में अधिक चावल उपजाकर कादर साहब नामक एक कृषक ने प्रथम पुरस्कार जीता था।
3: தோகை அளவுகளுக்கு நடுத்தர எதிர்ப்பு சக்தி கொண்ட இந்த ரகம்

और नदी तालुपर्णी पूर्व दक्षिण की दिशा में बहती चली जाती है, जहाँ इसकी पूरी सहायता से पार मिलती है। संस्कृत साहित्य में इसकी जल धारा को सौंदर्यमयी मानकर चिन्ना के नाम से पुकारा गया है। हालांकि चित्तार नदी की कुल लंबाई केवल 62 किलोमीटर है, किंतु इस पर

0: ताम्रपर्णी और पिटकारी के मध्य द्वाब में दूर दूर तक धान की हरी भरी फसलें लहलहाती हैं। बेगवती नदी पिटकारी पठारी प्रदेश से होती हुई कुचालम नामक क्षेत्र में पहुंचकर ताम्रपर्णी के मिलन के पहले कई झरनों का निर्माण करती है। इस स्थल को कुचालम जलप्रपात के नाम से लोकप्रियता मिली है। मशहूर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कुचालम के बारे में वहां के प्रशासकीय अधिकारी गुरु स्वामी के शब्दों में
1: कुचालम पेमेंगे அதுக்கு தமிழில் வார்த்தைகளே கிடையாதுங்க. அது குற்றாலத்தில் இருந்து ஆண்டு அனுபவிச்சுன்னு தான் தெரியும்.
2: அது குற்றாலத்தில் விசேஷத்தை பத்தானி ஹோ சப்தம் கி கமி ஹோ ஜாயேகி. परंतु यहाँ कुचालम आकर इन झरनों में नहाकर तथा प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर बस कहना कठिन है, पर अनुभव किया जा सकता है। कुचालम में अनेक झरने हैं, जिनमें तेज रूही, कुचालम में एक बार आने से बार बार आने को मन करता है। यही तिरू कुचाल नागर मंदिर है। भक्तों का ऐसा विश्वास है कि इन झरनों में स्नान करके मंदिर में पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस कारण पर्यटकों के अलावा यहाँ धार्मिक यात्रियों की भी भीड़ होती है और पूजा अर्चना के स्वर गूंजते
0: पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ताम्रपर्णी का जल भी गंगा जल के समान पवित्र और पुण्य प्रदान करने वाला है, क्योंकि इसका आदि स्रोत शिव जी का कमंडल है। किंतु युगों युगों से बहती आ रही सरिता ताम्रपर्णी का जल मनुष्यों के द्वारा अवांछित उपयोग किए जाने के कारण अब दूषित होने लगा है। ताम्रपर्णी जल में बढ़ती हुई गंदगी से लोगों में चिंता होने लगी। इसके जल को दूषित होने से बचाने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तिरुनेलवेली शाखा के इंजीनियर श्री के कार्तिकेयन दे रहे हैं।
3: சுமார் 120 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள இந்த தாமிரபரணி நதியில் தொழிற்சாலையிலிருந்து வெளிவரும் உற்பத்தி கழிவுநீரும் தொழிலாளர்களின் மூலமாக ஏற்படும்
4: தாமிரபரணி நதி ஜல் தூஷித் ஹோனே முக்கிய காரணம் இஸ்க தட்டோ பர் ஸ்தாபித் கார்கானோ ஆர் மிலோ சே ஆனே வாலா கந்தா பானி ஹை। मजदूरों तथा आसपास बसे लोगों द्वारा भी नदी में गंदगी फैलाई जाती है। सुबंदरनाथ जिले में स्थित रासायनिक और अन्य छोटे कारखानों से भी गंदगी नदी में आती है। ताम्रपर्णी नदी में प्रदूषण कम करने के लिए उन कारखानों के अधिकारियों को समझाया जाता है कि जल शुद्ध करने वाले यंत्रों को ठीक रखें और नदी में गंदगी कम बहाएं। उनके अलावा आसपास के लोगों को जागरूक और सावधान किया जाता है। जनसंचार के साधनों द्वारा भी संदेश दिया जाता है कि नदी में गंदगी ना फेंकें। दूषित पानी से कई तरह की बीमारियां होती हैं।
3: मुड़ी तिरनोड़े इकबड़ी अरुत।

घाट के पोदुगल पर्वत से निकलकर मचलती हुई ताम्रपर्णी करीब 130 किलोमीटर की राह तय कर कुरुमेल वेली क्षेत्र को शस्त्र शामल बनाती हुई चौढ़ा का रूप धारण

धीरे धीरे वो पहुंचते हैं बंगाल की खाड़ी के नजदीक तिरुवई कुंटम। तिरुवई कुंटम ये नाम है उस स्थान का जहाँ से ताम्रपर्णी की जलधारा सागर के अनंत अंक में समाहित होने को आकुल होती है और अंत में

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

शिव महिमा। प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित यह कार्यक्रम शिव महिमा।

0: शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, किंतु उसने त्रिलोक स्वामी शिव तथा देवी सती को आमंत्रित नहीं किया। महादेव की अनुमति से देवी सती इसका कारण जानने दक्ष यज्ञ में गईं। अभिमानी दक्ष ने यज्ञ स्थल पर उनका भी अपमान कर डाला। महर्षि दधीचि के नेतृत्व में अनेक ऋषि मुनियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, परंतु दक्ष टस से मस न हुआ। पति के अपमान से आहत हो देवी सती ने अपनी देहाहुति दे दी। तभी एक आकाशवाणी हुई जिसने दक्ष और दक्ष यज्ञ विनाश की घोषणा की। प्रस्तुत है इसके आगे का प्रसंग। रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: परम ज्ञानी सूद जी, जो भी हो, धन्य है देवी सती। उन्होंने समस्त स्त्री वर्ग के लिए पतिव्रत धर्म का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि एक पतिव्रता को पति निंदा सहन नहीं होती है। वो प्राणों पर खेल कर भी अपने पति के सम्मान की रक्षा करती है।
2: शौनक जी, देवी सती की महानता इससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि उन्होंने पति से मानसिक रूप से त्यक्त होने के बाद भी ऐसा किया।
1: हाँ सूत जी महाराज, मानसिक रूप से विलग रहने के उपरांत भी शिव और सती कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए, दाम्पत्य जीवन का आदर्श उदाहरण बने रहे।
2: और इसी कारण देवी सती से ये विछोह भगवान शिव के लिए असहनीय हो गया। दंभी दक्ष के प्रति उनका क्रोध आकाश छूने लगा। उन्होंने अपनी एक जटा से अपने ही विकराल स्वरूप वीरभद्र और महाकाली को उत्पन्न किया।
3: दक्ष का ये दुस्साहस, वीरभद्र।
4: आज्ञा महाप्रभु।
3: जाओ दक्ष और दक्ष यज्ञ का विनाश कर डालो।
4: जो आज्ञा महादेव।
3: महाकाली।
5: आदेश देवाधिदेव।
3: तुम काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, त्वरिता तथा वैष्णवी, इन सभी नव दुर्गाओं के साथ यज्ञ विनाश में वीरभद्र का साथ दो।
5: आपकी आज्ञा शिरोधार्य है जन्मदाता।
3: और तुम नंदीश्वर।
4: जी महाप्रभु।
3: हमारे समस्त गणों का नेतृत्व करते हुए वीरभद्र का सहयोग करो।
4: आज्ञा पालन होगा देव।
3: वत्स वीरभद्र, जाओ सहस्त्र सियों से जुते हुए इस रथ पर आरूढ़ हो सेना का नेतृत्व करो। जाओ मेरे गणों, विजयी होकर लौटना।
6: देवाधिदेव महादेव की
7: जय।
6: देवाधिदेव महादेव की
7: जय।
6: देवाधिदेव महादेव की
7: जय। भोले भंडारी की
6: जय।
7: भोले भंडारी की
6: जय।
8: हमारे स्वामी का अपमान करने वाले दक्ष, हम आ रहे हैं।

0: बम बम भोले, बच सकता है तो बच।
1: महादेवी की बलिदान स्थली को हम रक्त रंजित कर देंगे,
0: रक्त रंजित कर देंगे, रक्त रंजित कर देंगे।
2: अरे ये क्या अचानक मेरा बायां अंग क्यों फड़कने लगा? ये की भूमि क्यों डोलने लगी? ये संपूर्ण आकाश में उथल पुथल मच गई है। ये कैसे भयावह चक्र सूर्य मंडल को घेरे जा रहे हैं? बादलों के बिना ही ये बिजली कैसे कौंधने लगी? अवश्य ही कोई विपदा आने वाली है, कोई विपदा आने वाली है। बिजली कैसे कौंध रही है?
3: अधिपति दक्षराज, अधिपति दक्षराज, रुद्र सेना ने आक्रमण कर दिया है।
2: क्या?
4: कौन है यहाँ जो शिव शक्ति का सामना कर पाएगा?
0: हम भभूत धारी है, सत्य है, हम भभूत धारी है। आज तुम्हारी देह की भस्म ही हमारा भभूत बनेगी। शिव निंदको, बच सकते हो तो बचो।
4: अरे अरे देखो, वो दक्ष मृग का भेष धारण करके भागा जा रहा है।
0: अरे ठहर रे ज्ञानहीन दक्ष, तेरा सिर अभी धड़ से अलग करता हूँ।
5: वो देखो वीरभद्र, ऋषियों को भ्रमित करने वाला, ब्राह्मणत्व को कलंकित करने वाला भृगु उस वृक्ष के पीछे जा छिपा है।
0: अभी उसको उसकी नियति तक पहुँचाए देता हूँ।
5: हे शिवरूप वीरभद्र क्षमा, शिव अवहेलना कर मुझसे अपराध हो गया। क्षमा हे शिव शंकर क्षमा।
0: तुमने मेरे स्वामी से क्षमा याचना की है, इस कारण मैं तुम्हें मृत्यु भय से मुक्त करता हूँ, किंतु दंड तो अवश्य ही दूंगा। मैं तुम्हारी जटाओं को ही उखाड़े डालता हूँ।

0: नहीं पुत्र दक्ष, तुम्हारी रक्षा अब किसी के सामर्थ्य में नहीं है। मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूं, यह समझ तुमने अपने आप को परम ब्रह्म मान लिया। भूल गए कि परम ब्रह्म कौन है? स्वयं तुम्हारे इस पिता और भगवान विष्णु के जन्मदाता भगवान शिव हैं।
1: परंतु पितामह, आपके बल पर ही मैंने इस यज्ञ का आयोजन किया था।
0: यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं शिव तथा विष्णु से भिन्न हूं? तुमने अपने मानस में ही सही हंत्र देवों को विभाजित करने का पाप किया है। इसका फल तो तुम्हें भुगतना ही होगा।
1: आप मेरे पिता हैं।
0: दक्ष, पिता परमेश्वर से बड़ा नहीं होता है। जाओ जाओ, भगवान विष्णु की शरण में जाओ। कदाचित वही कोई उपाय बता सके, परंतु इसमें भी हमें संदेह है।
1: जैसी आज्ञा पितामह। त्रैमाम त्रैमाम विष्णुदेव, मेरी रक्षा कीजिए। शिवगणों ने प्रलय मचा रखी।

0: हर ओर विनाश ही विनाश हो रहा है। प्रभु प्रभु रक्षा कीजिए।
1: दक्ष, इस विनाश को तुम्हारे अहंकार ने ही आमंत्रित किया है। शिव तत्व से विमुख होकर तुम भूल गए कि क्या कर्म है और क्या अकर्म। जो शांत मन से ईश्वर की भक्ति करते हुए कार्य करता है, प्रभु शंकर तुरंत ही उसके कर्म का फल देते हैं। परंतु जो मनुष्य ये मानता है कि वही सबसे बड़ा ज्ञानी है, ईश्वर को भुला देता है, वो प्रभु के तिरस्कार का पात्र बनता है। तुमने देवी सती का अपमान किया है, इससे बड़ा कुकर्म और क्या हो सकता है?
0: परंतु श्रीहरि, मैं आपका भक्त हूं।
1: हम तीनों देव तो सदा ही भक्त के अधीन रहते हैं। भक्त की भक्ति हमारे चित्त को प्रसन्न करती है, हमारे मानस को शांति प्रदान करती है, और इसी भक्ति के अधीन हो हम तीनों भक्त के अनुरोध पूरे करते हैं। जो भक्त सुख दुख दोनों ही में हमें स्मरण करता है, वो सदा ही हमारा कृपा पात्र बनता है।
0: हे प्रभु, आज आपका भक्त अपनी प्राण रक्षा का अनुरोध कर रहा है। भक्त वत्सल, भगवान विष्णु।
1: अरे दक्ष, प्रभु शिव से बड़ा भक्त वत्सल कौन हो सकता है? ऐसे विकट और विषाद पूर्ण समय में भी उन्होंने अपने इस भक्त अर्थात मुझे श्राप मुक्त करने की लीला रच डाली। मैं वीरभद्र से युद्ध करूंगा दक्ष, परंतु तुम्हारा पक्षधर बनकर नहीं, उस महाप्रभु की आज्ञा से जो सदा अपने भक्तों का कल्याण ही सोचते हैं।
2: महाज्ञानी शौनक जी, भगवान विष्णु तथा वीरभद्र के बीच घमासान हुआ। परिणाम प्रभु जानते थे। वीरभद्र ने उनके सुदर्शन चक्र को स्तंभित कर दिया, उनका शरीर अस्त्रों से आच्छादित कर दिया। पराजित भगवान विष्णु शिव का स्मरण करते हुए अंतर्धान हो गए। शिव महिमा ने उन्हें दधीचि के श्राप से मुक्त कर दिया था।
3: महाभाग सूत जी, क्या दधीचि ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था? कब, कैसे?
2: प्राचीन काल में क्षुव नाम के एक महातेजस्वी राजा थे। वो और मुनीश्वर दधीचि बड़े अच्छे मित्र थे, परंतु एक बार दोनों में विवाद छिड़ गया। क्षुव का कहना था कि क्योंकि राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है, इसलिए वही श्रेष्ठ होता है।
3: और महर्षि दधीचि का क्या विचार था?
2: शौनक जी, शिव भक्त दधीचि कहते थे कि ब्राह्मण प्रभु के निकटतम है, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है। वाद विवाद इतना बढ़ गया कि धन वैभव से मदमत क्षुव ने मुनि दधीचि का शरीर अपने वज्र से काट डाला। गिरते गिरते दधीचि ने योगी शुक्राचार्य का स्मरण किया।
4: हे शिव भक्त शिरोमणि मृत्युंजय विद्या प्रवर्तक शुक्राचार्य, इस ब्राह्मण की रक्षा करो, रक्षा करो।
5: अरे अहंकारी राजन क्षुव, तुझे अपने धन वैभव बल पर बहुत अभिमान है। आ, एक ब्राह्मण अपने तप बल से क्या कर सकता है? तूने क्षण भर में एक ब्राह्मण के टुकड़े तो कर डाले, परंतु क्या तू इन्हीं टुकड़ों को पुनः जोड़ सकता है? नहीं, किंतु एक शिव भक्त ब्राह्मण ऐसा कर सकता है।

0: वध हो गए हैं। मुनिवर ये कौन सा मंत्र है?
1: तात दधीची, ये श्रुति प्रतिपादित महामृत्युंजय मंत्र है।
0: मुनिवर शुक्राचार्य, आप मुझे इस मंत्र का महात्म्य समझाइए।
1: अवश्य भृगुवंशी दधीची, सुनो। त्र्यंबकम यजामहे, अर्थात हम भगवान त्र्यंबक की आराधना करते हैं। मुनि दधीची, त्र्यंबक और कोई नहीं, स्वयं त्रिलोकी शिव हैं। वे सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं। सत्व, रज और तम तीनों गुणों के महेश्वर हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों महान ईश्वर महादेव ही हैं।
0: और मुनिवर, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम का क्या अर्थ हुआ?
1: जैसे फूल में उत्तम गंध बसी रहती है, वैसे ही सभी भूतों, गुणों, कृत्यों, इंद्रियों, देवों तथा गणों की आत्माओं में प्रभु शिव बसे रहते हैं। वे अंतर्यामी शिव ही प्रकृति का पोषण करते हैं। महातत्व से लेकर संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि उन्हीं के द्वारा होती है।
0: यही सत्य है ब्राह्मण शुक्राचार्य, यही सत्य है।
1: और मुनि दधीचि, उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर मुक्षेयमामृतात्, अर्थात हे प्रभु, जैसे फल पक जाने पर अपनी लता से छूट जाता है, उसी प्रकार मैं भी मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त हो जाऊं, मोक्ष को प्राप्त करूं। महर्षि दधीचि, यही मृत्युंजय संजीवनी मंत्र है।
0: गुरु शुक्राचार्य, क्षोभ ने समस्त ब्राह्मण वर्ग का जो अपमान किया है, उसका प्रतिकार कैसे लिया जाए?
1: मुनि श्रेष्ठ दधीचि, शिव चिंतन कीजिए और उनसे वरदान प्राप्त कीजिए। हम जाते हैं मुनिवर, आप शिव आराधना में लीन होइए।

0: देवाधिदेव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ।
1: वर मांगो भक्त शिरोमणि दधीचि।
0: प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 3 वर दीजिए। पहला, मेरी अस्थियां वज्र हो जाएं, और प्रभु दूसरा, कोई मेरा वध ना करने पाए, और प्रभु तीसरा वर मुझे ये दीजिए कि मुझ में कभी दीनता ना आए।
1: तथास्तु
0: प्रभु।
2: महामुनि शौनक जी, ये 3 वर प्राप्त करने के पश्चात ऋषि दधीचि राजा क्षुव के पास गए और राजेंद्र क्षुव के मस्तक पर प्रहार किया। क्रोध में आकर क्षुव ने एक बार फिर दधीचि पर वज्र प्रहार किया, परंतु शिव वरदान के कारण उसका कुछ प्रभाव ना हो पाया।
3: परम ज्ञानी सूत जी, इससे क्षुव तो बहुत आश्चर्यचकित हुआ होगा।
2: हाँ शौनक जी, राजा क्षुव तुरंत ही भगवान विष्णु के पास गए, उनसे अपने साथ चलकर दधीचि का गर्व भंग करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उसे बहुत समझाने का प्रयास किया, कहा कि शिव भक्त ब्राह्मण किसी से नहीं डरता।
3: तो क्या क्षुव भगवान विष्णु की बात भी नहीं माना?
2: नहीं शौनक जी, क्षुव अपनी जिद पर अड़ा रहा कि विष्णु उसके साथ जाकर दधीचि से एक बार ये कहलवा दें कि दधीचि क्षुव से डरते हैं।
3: फिर क्या हुआ मुनिश्रेष्ठ?
2: भगवान विष्णु ने क्षुव से कहा कि उनका क्षुव के साथ जाकर उसका पक्षपात करना दधीचि को दुख पहुंचाएगा, और महर्षि का ये दुख क्रोध का रूप लेकर विष्णु के लिए श्राप का कारण भी बन सकता है। मगर फिर भी विष्णु भक्त के अधीन थे, वे अकेले ही ब्राह्मण का रूप धरकर महर्षि दधीचि के आश्रम में जा पहुंचे।

0: में आपका स्वागत है। आज्ञा करें।
1: हे परम शिव भक्त अविनाशी दधीची, मुझे एक वर दें।
0: ब्राह्मण का रूप धरे भगवान विष्णु, आप मायावी अवश्य हा? परंतु शिव कृपा से मैं आपको पहचान गया। हे पापाहारी भगवान, आप ये वेश त्यागिए और असली रूप में दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कीजिए भगवान।
1: हे सर्वज्ञ दधीची
0: भगवान,
1: मेरा एक अनुरोध स्वीकार कीजिए। राजा क्षुभ से मात्र इतना कह दीजिए कि हे राजन, मैं तुमसे डरता हूं।
0: प्रभु,
1: राजा ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है, मेरे भक्त का मन रखने के लिए इतना भर कर दीजिए।
0: प्रभु, आपकी भक्त वत्सलता का मैं आदर करता हूं, किंतु असत्य का साथ मैं कभी नहीं दूंगा। भगवान, आपके इस व्यवहार से मुझे ठेस पहुंची है, मैं आपको श्राप देता हूं। दक्ष यज्ञ में आप शिव गणों से ही युद्ध करने पर बाध्य हो जाएंगे।
1: महर्षि, आपने ये क्या श्राप दे डाला? अपने ही प्रभु के गणों से युद्ध, ये तो बहुत बड़ा पाप होगा।
0: उसी युद्ध में शिव कृपा से आप मेरे श्राप से मुक्त भी हो जाएंगे भगवान।
2: अच्छा, तो ये रहस्य था भगवान विष्णु के युद्ध में भाग लेने का।
3: हाँ विप्रवर शौनक जी, युद्ध में पराजय के पश्चात भगवान विष्णु शिव लीला के कारण श्राप मुक्त भी हो गए।
2: इस प्रसंग में हमें दक्ष का तो स्मरण ही नहीं रहा, उसका क्या हुआ मुनि श्रेष्ठ?
3: सबकी पराजय के पश्चात वीरभद्र ने दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे वहीं अग्नि कुंड में होम कर दिया। सभी शिवगण विजय का उल्लास मनाते हुए कैलाश लौट गए।
2: महाभाग सूत जी, फिर तो सब कुछ नियमित रूप से चलने लगा होगा।
3: नहीं शौनक जी, दक्ष विनाश के बाद सृष्टि में मानव उत्पत्ति रुक गई। इससे ब्रह्मा और विष्णु बहुत चिंतित हुए। वे सभी घायल और क्षत विक्षत देवताओं के साथ भगवान शिव की शरण में पहुंचे।
4: हे देवाधिदेव, हम पर बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है, हमें इससे उबारिए महाप्रभु।
5: कहिए विदात, क्या चाहते हैं?
4: हे करुणानिधि, आप ही के आदेश से मुझे और श्रीहरि को संसार में जीवन का उत्पादन और पालन करना है। परंतु प्रभु, प्रजापति दक्ष की मृत्यु के बाद जीवों की उत्पत्ति रुक गई है, जो जीव बचे हैं वे नष्ट हो रहे हैं।
1: हे दया सिंधो, आप सदा हम भक्तों की विपत्तियां दूर करते आए हैं, आज भी हमारी सहायता कीजिए देवाधिदेव।
5: विष्णु हरे, आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं?
1: शंभो, आप प्रजापति दक्ष को जीवन दान दें ताकि मानव उत्पत्ति फिर आरंभ हो सके, सृष्टि का कार्य फिर सुचारू रूप से चलना आरंभ हो जाए।
5: विधात, श्रीहरि, दक्ष का विध्वंस मैंने नहीं किया है, ये उसके अपने कर्मों का ही फल है। कभी किसी को ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कष्ट देने वाला हो। परंतु हे ब्रह्मा और विष्णुदेव, आप दोनों की बात मैंने कभी नहीं टाली है, क्योंकि आप सदा जन कल्याण का ही सोचते हैं। आइए हम सब दक्ष की यज्ञ स्थली कनखल चलते हैं। नंदीश्वर।
6: आज्ञा प्रभु।
5: दक्ष के शरीर को यहां लाओ।
6: अभी लीजिए प्रभु, दक्ष शरीर प्रस्तुत है प्रभु।
5: परंतु इसका सिर कहां है?
7: महाप्रभु, उसे तो मैंने उसी समय अग्नि में होम दिया था।
5: नंदी।
6: हाँ।
5: यज्ञ पशु

0: पकड़े का सिरलाओ।
1: लीजिए स्वामी।
0: दक्ष, मैं तुम्हें पवित्र बकरे का सिर प्रदान करता हूं।
2: क्षमा क्षमा महाप्रभु, मैंने विष भरे शब्दों से आपका हृदय बींध डाला, देवी सती के आत्मदाह का कारण बना, फिर भी आप मुझ भक्त पर अनुग्रह करने यहां आए, मुझे जीवन दान दिया, मेरा अपराध क्षमा करें महादेव, मुझे पुनः अपनी शरण में ले प्रभु।
0: प्रजापति दक्ष, मैं ईश्वर हूं और स्वतंत्र हूं, फिर भी अपने भक्तों के अधीन रहता हूं। मैं ब्रह्मा और विष्णु एक ही है दक्ष। जो हम त्रिदेवों में भेद करता है वो नरक का भागी होता है।
3: दक्ष, जो अपने को मेरा भक्त मानकर शिव निंदा करता है अथवा शिव भक्त होकर मेरी निंदा करता है, उसे निश्चय ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती।
4: और पुत्र दक्ष, जो हम तीन संपूर्ण जीव रूप देवताओं में भेद नहीं रखता, उसे अवश्य ही सुख शांति और आनंद की प्राप्ति होती है।
0: हम तीनों में ना भेद संभव है ना होगा। जो ये मानकर कर्म करेगा उसे मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति होगी।
2: भगवान, मैं इस शिव तत्व को सदा स्मरण रखूंगा। देवाधिदेव, ये संदेश अपनी समस्त प्रजा में प्रचलित करूंगा।
0: दक्ष, आयुष्मान भव।
5: मुनिवर सूची, इस प्रकार दक्ष के अपराध को क्षमा कर उसे फिर से जीवित कर भगवान शंकर कैलाश पर जाकर गहन तपस्या में लीन हो गए। महाप्रभु की कृपा से ब्रह्मा और विष्णु भी प्रसन्न हो अपने अपने धामों को लौट गए। सृष्टि का कार्य सुचारू रूप से चलने लगा।
6: महामुनि सूत जी, देवी सती ने तो अपने प्राण त्याग दिए, फिर ब्रह्मा जी का कथन कैसे पूरा हुआ?
5: कौन सा कथन शौनक जी?
6: यही कि कुछ असुरों के विनाश के लिए शिव पुत्र की उत्पत्ति आवश्यक है।
5: वो प्रसंग भी आप अवश्य सुनेंगे विप्रश्रेष्ठ शौनक जी।
6: कौन सा प्रसंग प्रभु?
5: पार्वती जन्म का प्रसंग, परंतु कुछ समय पश्चात।
6: जैसी आपकी इच्छा मुनिवर सूत जी।

राजभवन का आंगन किलकारियों से गूंज उठता है। चारों भाई घुटनों के बल चल रहे हैं, माताएं बलैया ले रही हैं और राजा दशरथ झुनझुना बजा रहे हैं।

इधर मुनि विश्वामित्र अपने आश्रम से अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं और राज दरबार जहां मुनि का स्वागत हो रहा है।

हाथ जोर राजा कहें परम पूज्य मुनिनाथ, भयल आगमन आपके दुनिया भयल सनाथ। हमसे ज्यादा आपके हम सब पर अधिकार, ई हमार सौभाग्य हो जागल भाग हमार। इतना कहकर राजा दशरथ अपने पुत्रों को मुनि के साथ विदा करते हैं।

इधर राम लक्ष्मण जनकपुर की गलियों में घूम रहे हैं। जनकपुर की स्त्रियां उन्हें अपलक निहारते हुए उनके सौंदर्य की आपस में चर्चा इस तरह से कर रही हैं।

मावलिम् इमां यस्तु दुर्गाया मम मानवाः पठे सर्वभयान् मुक्तः भविष्यति न संशयः। अर्थात कठिन के दुष्प्राप्य ज्ञानना स्वरूपे रहेला दुर्गम ध्यान थी प्रकाशित थनारा जमनी माया मोह अकर्षे ए दुर्गम मार्ग में रहेला दुष्प्राप्य अर्थना स्वरूप वाला दुर्गा देवी ने हमें प्रणाम करीश। तोज साथे दुर्गम दैत्यना संहारक विकट आयुधन धारण करनारा अविचिन्त्य अंगो वाला दुर्गम मार्गे गति करनारा होवाथी दुर्गम्य मुश्केली थी प्राप्त थनारा कम नसीब वाला मानसोना रक्षक स्वामिनी दुर्गा देवी खरेखर परमेश्वरी छे। ए माता दुर्गम्य छे, दुष्टों माटे भयंकर छे, तमनो क्रोध भयानक होय छे। दुष्प्राप्य मुश्किलियों ने टाळनारा दुर्गा माता वंदन करीए छे। जे मनुष्य दुर्गाना आ नामोनो पाठ करे छे ते बेशक बधाज प्रकारना भयमांथी मुक्त थाय छे।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।